वाहे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवा। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु।

नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे बेन होए सच्चार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनीच सदाए पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखांतर पाए पौड़ी।

0: नित जपे हर नाम, हर नाम तरावे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए, नानक आशकांडिये सदीरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आशकी उन्हें आखिए जे लिखे वरते सोई। महला दूजा,
0: सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए न गाए पाए पोड़ जित।

वस्तु अंतर वस मावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कहीं बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिफत।

दान विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का।

मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जग संचरयो, सो कवन कहे श्री गुरमयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोडी सुल्तान पिता चौथे पातशाह, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज। अज दे दिन श्री गोइंदवाल साहिब जी विखे ज्योति जोत समाए, तिना सतगुरां दा ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब, बेअंत संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी शरदा भावना दे नाल मना रहियां हन। यथा शक्त भेटावां अर्पण कर रहियां हन सतगुरु जी मेहरामत करनी, सरबत साध संगत दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां दर ते परवान करनियां, अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा, नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां, यात्रा सफला करनी। हे निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नेओटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी, आसा दी वार दे भोग जी की अरदास, पुल चुक मुआफ करनी, सिख पढ़ दे सुन दे

देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तुहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंप है कटे सो पाप तिन नरोके गुरु रामदास जिन पायो

न तीर्थ से रे छोटी काल गही मन की मन ही माहे रही भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहा संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जन भजन रा

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी बड़ी हवड़ा पार तेरा मृतबा रंग प्रंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सबक जान ला सब तेरे वास तेरा कर भला तेरे घर आनंद बदा।

पौड़ी वटी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जानना, सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेजा अपना आप जर, सर्प कला भरपूर दिसे जत कता।

शरण परे की रख शर्मा, जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रख शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कव्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिया, सब बैरिन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दै मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनाया, देव दैत जक्षन उपजाया। आदंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कट कट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट की पट पट की जानै। जब दुकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, याद नील नाद सांब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा।
एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव याद जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत तो पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत तो होए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट शास वै सकै न कोई एक बार जंत में संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठार मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठार मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गाव हो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਨੀਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟ ਹੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ,

बरोबर तप तप खपै बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए जियो तप्त है बरोबर तप तप खपै बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विल लाए बहुता बोलन चखण होए विण बोले जाने सब सोए रहा जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजै पवन आखै सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालख दागा दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगह बैसण नाही जाए कर्म मिला आखण तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्वदातार कर्म मिले आखण तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्वदातार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे
ਕੀ ਫਤਿਹ।

अंतर जामे पुरख बिधाते श्रद्धा मन के पूरे नानक दास एह सुख मांगे मौका।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर्शन प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहेओ, नानक ता का दास है सो निरंजन देव।

0: एक थे किए बिसारे, पूर्व रेओ सर्व में आप है नरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही धारण तारे, कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।
1: सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं, ऊचे ते ऊचो जानी जे प्रभु तेरो तानं, मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जानं, कौन उपमा देव बड़े ते बड़ानं, जाने कौन तेरो भया अलख अपार दया, अकाल कला है प्रभु सर्व को तानं, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।

कवन जो कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधिक ते तेज कोर तिर केम न परिये ब्रह्माधिक संकाद शेख गुण अंत न पाए अगहो कहो नहीं जाए पूर सब रहो समाए जे काटे सिरक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते।

0: यह लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मह जन नानक गुर पाहर ब्रह्म।
1: वाहे गुरु वाहे।

सो चहत मज सोत जिस दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी शब्द चनत्कार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम फात कह कौन मेट सके ईश्वम ज्ञान ध्यान तर्त ही चाहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाह।

हरि हरि नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरणा मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सी वे सुख

फिर पशुताने हाथ फलघा हार राख राख जान केरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रत पलघा दर्शन संत देह सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुम घा।